0: 있어요.
1: अधिक संख्या के समन्वित जात्यंतर मूलतन के जायगत विजय
2: लुकैया मारे विड़े ऊने दुखी वाणे मारे मेमोरी लॉस कीला
3: मेमोरी लॉस कौन डॉक्टर यार सुन दे
2: मम्मे किरी के बुनने है या सीनी विड़ने मुकुट आते पर विड़ करने है या माता
4: माय गॉड
3: सुपर डॉक्टर ने டாக்டர் ஹரியதம கீழ தியனவானே
5: இன்ன வெவி சிந்து வஹன்ன FM 93.5 FM 93.7 ஹந்தேவி ஹතර வெද්දි டியூன் කරලා தியாகන්න
6: இவனிங் டிரைவ் வித் சமித் அண்ட் சாரு
7: சம அனுகிரகය
6: மார்க்ஸ்மேன் சமூக வியாபாரி வித்தின் கேன் வாபித ஹரண தன் நவனிமாவக்கின் என டோமாஸ் வங்கிய வீக்கிட்டி மியந்திரக சாதம்பர் ஹிமிகருவுக்கு வண்ண அது மாவு தன் 1117 579 579
8: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්
9: සහයෝගීතා අනුග්‍රහය පටස්කාල අතට සල්ලි පල්ලිය ගුරුගේ රන් අය රන් පවුමට උපරිම මුදල අපෙන් ලක්ෂයටම පොලිය රුපියල් 480ක් විතරයි ගනුදෙනුවයි රත්තරන් පල්ලිය ගුරුගේ රන් අය